0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुज़स्समीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ़्ता जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है उससे भी अच्छा गुज़रेगा। गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम बड़ा अच्छा रहा है। अब कुछ चंद दिनों से जो है वो हल्की फुल्की सी बारिश भी हो रही है, झड़ भी है, लेकिन ये है कि मौसम जो है अच्छा है, इंजॉय करने वाला है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ अपने नेटवर्क में, कुछ जो है वो सैर करने गए हुए हैं, कुछ जो है वो डेनमार्क में ही घूम फिर रहे हैं, कुछ घरों की सफाइयों में लगे हुए हैं और बाकी जो है वो शादियों के चक्कर में है। तो सामेन नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करम प्रोग्राम लेके आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर है। मेरे साथ जनाब बाशिक कुरैशी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल ख़बरों पे कि दुनिया में जो है वो क्या हो रहा है। बाशिक साहब का शुक्रिया कि वो उन्होंने वक्त दिया। बाशिक कुरैशी साहब, आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदा में बताया शॉर्ट न्यूज़, जिस तरह आप जो है वो ख़बरें देते हैं, तो उसमें आपने बुज़ुर्गों के हवाले से बात की कि उनके लिए बहुत सी यहाँ पे तंजीमें हैं जो उनके लिए एक्टिविटीज़ रखती हैं। तो बाशी साहब, उसमें एक चीज़ और भी है कि एक तो आप एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो हैं घूमते फिरते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर।
2: बिल्कुल,
1: कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, आपके कुछ लम्हे जो हैं दिन के वो हंसा मजाक और लोगों से चले आप अपना वो कहते हैं ना दुख सुख जो है वो भी शेयर कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो है वो जो तवानाई है, जहन जो है वो ज़रा फ्रेश हो जाता है।
2: जी जी।
1: घर बैठने से बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तंजीमों के एक्टिविटीज़ के साथ भी, लेकिन अपने रिश्तेदारों में दोस्तों के साथ बैठें, कोई उनको बुला लें, कभी कभी खुद उनके पास चले जाएँ। और उनमें से जो सबसे बड़ी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है उनकी जो उनके जो बच्चे हैं उनसे कि अपने माँ बाप की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके उन पे जो है काफ़ी जो है उनकी मदद करें, उनके साथ जो है वक्त बिताएं, उनके साथ कहीं खाना खाने चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, तो उनको साथ लेके थोड़ा सा जो है। और बेशक के हमारे बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि जी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो उन्हें थोड़ा सा फोर्स करें। अगर वो कहीं नहीं जा सकते तो आप जो है उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, उनको घर बुला लें उनके पास, तो महीने में एक आध मरतबा जो है वो अपने बुज़ुर्गों की भी थोड़ी सी जो ख्वाहिशात हैं, कोई उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनमें भी जो है वो दिलचस्पी लें।
2: रज़ा भाई, आपने ये जो बात की है इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि तन्हाई जो है वो इंसान को बहुत प्रॉब्लम पैदा करती है। एक तो यह है कि तन्हाई से आप अजीबोगरीब आपकी सोच हो जाती है, फिर आप जो है अंदरूनी सोचते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, और आपका जो है कई बीमारियां ऐसी होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर, अगर आप ज़्यादा सोचते रहें तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तन्हाई को दूर करने के लिए डेनमार्क में हैं कुछ पाकिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पे कोपेनहेगन के इलाके में इनवान द सीनियर्स के की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके 110 से ज़्यादा मेंबर हैं और मैं कई दफ़ा उनकी जो तंजीम की जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं उसमें जाता हूँ। खुशी की बात यह है कि उसमें ख्वातीन भी उतनी आती हैं जितनी जो है मर्द आते हैं, बल्कि कई दफ़ा ख्वातीन ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा एक्टिव भी होती हैं और उनको डेनिश मॉइस्चर के बारे में ज़्यादा पता होता है। एक तो ये, और ये जो उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता जो हैं शेख इशफाक साहब हैं और साथ में खुशदिल अहमद भी हैं, वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस बात तरफ आपने इशारा किया, मैं भी उसको कहता रहता हूँ कई दफ़ा कि अगर आप अपने ही लोगों में बैठेंगे तो बातें फिर वही होंगी, फिर आपको मुआशरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और आपकी जो सोच है वो महदूद हो जाती है। तो इसलिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में कई दफ़ा कहा है और अब हम अपने रेडियो आपके प्रोग्राम के तवस्से से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो है एल द सेन, جس کے تقریباً 2 ملین 1.5 ملین کے قریب ممبر ہیں, جتنے پینشنرس ہیں, اور ایک ہے سینئرس, وہ بھی ایک اسی قسم کی آرگنائزیشن. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو لے کے جاتے ہیں, کھیل وغیرہ کرتے ہیں, گیمز ہوتی ہیں, ان کے دفتر ہیں, مختلف آفیسز بنے ہوئے ہیں, تو پلیز اس کے بھی آپ ممبر بن جائیں. اس میں کئی سہولتیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ جب آپ ڈینش لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, آپ سیکھتے بھی ہیں. آپ ان سے, میں کل ایک اس میں برتھ ڈے پارٹی میں گیا تھا, اس میں کافی سینئر لوگ تھے, سارے ڈینش تھے, میں ہی ایک غیر ملکی تھا. تو وہاں پہ جو لوگوں سے باتیں ہو رہی تھیں, اس میں کئی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ آپ ڈینش معاشرے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی حصہ لیں, اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ممبر بن جائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو تنہائی جو ہے نا, یہ انسان کو کھا جاتی ہے, بالکل آپ کو پتہ ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں, ایکٹیویٹی کرتا رہوں, اور پھر یہ کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ شارپ رہتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں اگر آپ کا دماغ شارپ نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
1: وہ یاداشت کی کمزوری جس کو آپ کیا کہتے ہیں,
2: ایمنیشیا,
1: جی, تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے, اور اپنی پرانی یادیں اور نئی چیزیں جو ہیں ان کو دہراتے رہا کریں تاکہ آپ کی جو یاداشت ہے, اور وہی ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے؟ تو جب آپ کسی سے ملتے ہیں, کوئی پرانی بات دہرا لی, کوئی نئی کر لی, تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی جو کیا کہتے ہیں صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے.
2: اور پھر یہ دیکھیے, اگر آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کہیں, تو آپ ٹیلی فون پہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, تو وہ بھی بہتر آپ کے.
1: پر یہ ہے کہ وہ پرابلم سے دور رہیں,
2: پرابلم سے دور رہیں, اور تنہائی سے دور رہیں, اور بلڈ پریشر کم کیے.
1: کیونکہ بشیر صاحب, زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر سی ہے.
2: بالکل بالکل.
1: اور انسان کو جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے.
2: اور یہاں پہ مجھے بابا جی بہت یاد آتے ہیں, 87 ان کی عمر تھی, لیکن وہ آخر تک بڑے ہشاش بشاش تھے, موومنٹ کرتے رہتے تھے, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کے لیے.
1: بشیر صاحب, چلتے ہیں ذرا ڈنمارک سے باہر, اور یہ ذرا صحت سے باہر دنیا میں,
2: مشرق وسطی کی طرف چلتے ہیں, مڈل ایسٹ کی طرف.
1: مڈل ایسٹ, لیکن یہ میرے یہاں امریکہ کے طرف سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ چلتے ہیں.
2: ہاں, وہ مڈل ایسٹ میں تو حرامزدگیاں کر رہے ہیں نا, وہ امریکہ جو ہے اس کی طرف چلے.
1: اچھا بشیر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ بن سلمان جو ہے, محمد بن سلمان کی سفارتی فتح, یا یہ مشرق وسطی کے لیے نیا امتحان ہے؟
2: یہ آپ نے ٹاپک جو چھیڑا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں شروع ایسے کرتا ہوں کہ امریکہ نے ایران پہ 2 دفعہ حملے کیے, لاسٹ ایئر اور اس سال, اور اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ایران ہے وہ جوہری طاقت بن جائے اور جوہری ہتھیار بنا لے, حالانکہ انہوں نے کبھی اس کا نہ دعویٰ کیا نہ وہ چاہتے ہیں, بلکہ اس کے بارے میں شہید امام خمینی جو ہیں انہوں نے تو فتویٰ بھی دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن پھر بھی اس کے اوپر حملے کرتے رہے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے سعودی عربیہ کے جو محمد سلمان بن محمد بن سلمان ہیں, ان کے جو ابھی ڈیفیکٹو پاور ہے جن کے ہاتھ میں, ان کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا ہے. یہ امتحان ہے, یہ نئی امتحان ہے, لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مشرق وسطی میں جو